नारद मुनि ने चरना से ढह के इस प्यार वाले मन ने अरदास की थी, नारद जी तुस तानू जो मेरे भगवान दे दर्शनां नू जा रहे हो, नारद तुसी तानू जिन्हां नू मेरे भगवान दे दर्शन मिलनगे, नारद ने तकिया प्यार वाला मन, ए प्यार वाला कोई तपस्वी अखां चू अथरू के रहे है। नारद ने किया क्यों रोंदा है, तैनू भी किसी चीज की लालसा है, जंगल बियाबान दे विच समाधि लगा के बैठे हैं, तू की चाहुंदा है। इस दियां कुब्बां निकलियां ते प्यार नाल इसने पढ़िया, नारद मेरी तां इक्को मंग है केड़ी।

आपा दिती जी आसा वाला जीवन बड़ा स्वादला हुंदा है आखो श्री भाई आसा वाले जीवन विच आस है ना इंतजार है ना एदे च बड़ा सुख है एदे च कोई अगम्मी रस है साईं दी याद विच मालक दी याद विच यादां भी पूरियां हो जांदियां पर प्यारी सत्संगत याद विच भी रहना ए भी अवस्था है मालक दे दर्शनां दी प्यास विच इस जीवन नूं बतीत करना हजूर फरमाउंदे ने मैं उस तों भी कुर्बान जांदा हां जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक तके बल बल जैसा इस प्यास च जीवन बतीत होंदा रहे फिर आपे मालक मेहर करे प्यारी सत्संगत जे एदियां आसां पूर्ण तां साडियां भी पूर्ण आखो श्री अकाल।

जिन्नी तुदनू तन के आ तेन जम नेड़ नया। कितनी भक्ति चौथी किना उते जिन्होंने गुरु नू तन के है आओ तन गुरु नानक दियां बख्शा प्राप्त करने वाली सर्वतमाई पाई प्यार नाल सारे आखो तन गुरु नानक।

0: जब तू निर्मल ए सब तू निर्मलता जिस वेले तू हरि का नाम जपेगा तेरा मन निर्मल होगा, मन निर्मल होएगा फिर तेरे कर्म भी निर्मल होंगे। निर्मल कर्म करने वाला सदा सुखी है, पाप करने वाला दुखी है। पापी कर्म कमांदे कर दे आए, इस वास्ते सिमरन कर। जी मन नहीं लगता, मन बड़ा चंचल है। बाबा जी वचन करते सन मन ना लग, मन बेशक ना लग, पर फिर भी सिमरन कर, एदा भी लाभ।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

0: जन नानक को हर बख्श रहे हो, जन नानक को हर बख्श।
1: हमरी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जपे इरानिया हर तुम मद अगम अगाह। हर देहो प्रभु मत गुर सतगुर के पग पा, सत संगत हर मेल प्रभ हम पापी संगत रहा।
0: जन नानक को हर बख्श ले हो, हर तुटे मेल मिला,
1: हर कृपा कर सुन।

पहचाना अमरदास अंगद पहचाना अमरदास रामदास कहायो साधन लखा मूढ़ नहीं पायो भिन्न भिन्न सब हो कर जाना एक रूप किन हो पहचाना जिन जाना तिन ही सिद्ध पाई तिन समझे सिद्ध हाथ ना नानक अंगद को बप धरा धर्म प्रचुर इह जग मो करा अमरदास पुन नाम कहायो जन दीपक ते दीप जगायो जादू वरदान सवा को आवा रामदास तब गुरु विजय पूर्व देवड़ा जिसकी मस्त किसे घर आवे बैठा सोधी पादशाह रामदास सतगुरु जग तो मन ध्यान धरे फिर सकल जग प्रभु को पावे आत्म प्रकाश को वेद बाणी सहित ब्रंच जस गावे जग को शिव मन गहना तजात कविलास को जाको जोगी जनी सिद्ध साधक अनेक तप जटाजूट पेख किए फिर उदास को सो तिन सतगुर सुख भाए।

नाम मिले मन तृप्ति है बिन नामे त्रिग जीवा। कोई गुरमुख सज्जन जे मिले मैं दसे प्रभ गुणदास, और किस विट्टो चौखनिए मैं नाम करे परदास। मेरे प्रीत।

रे सुर नूं ज्यादा लगाउण नाल प्रधान सुर बनेगा और उस दे नाल संबंधित सुर पंचम लगाउण नाल वजीर सुर बनेगा और श्री राग दा स्वरूप कायम होगा। ये दोनों सुरां ते निर्धारित श्री राग दा स्वरूप है। तो आप श्रवण करना, साहिब गुरु रामदास महाराज जी ने इस राग अंदर यह शब्द गाया है। यह मैं तुहानू ध्रुपद ताल के अंदर श्रवण करा रहा। साहिब गुरु सच्चे पातशाह ध्यान करो, उन्हां दा रागां नाल तादा नाल कितना प्यार सीगा और किस तरह क्या सोहनिया रीतां आप बंदिश करते और सात संगत भी सुनाते होंगे सके। श्रवण करना धन गुरु रामदास, सारे आखो धन गुरु रामदास।

जो पड़ताल है जिसन पड़ताल गुरु मातंत्र किया जाता है उसका भाव है कि ताल नू बदल के गायन करना। जिवें हुण पहला जो रहाओ है वो ध्रुपद ताल च आया है, हुण ताल बदल गया। इस नू असीं दीप चंदी कहने हैं, 1400 मात्र का ताल है, ताल बदल गया है, इस नू पड़ताल कहांगे। और श्री गुरु महाराज जी ने पड़ताल भी बड़े शब्द उच्चारण किए ने, तो आप जरा इसका भी रस थोड़ा जिहा लाओ।

शब्द है वो गवैया नु महाराज का हुक्म है। वो कहते ने तदरदानी दानी तुम दानी तल तुम दिरना। ये ग्रंथ जो है सर्वलो प्रकाश की बाणी है। धागड़ी धर्म दृढ़ता दागड़ी दिम दिरना, बागड़ी ब्रिते वांग तागड़ी तोम तोम तोम दिरना, दागड़ी दे ताल कागड़ी कोम किरना। ये साहब जी ने तराना गाया तो इसका मतलब है दागड़ी दे ताल कागड़ी कोम किरना। इहदा अर्थ है कि कुम किरना तुसी पलटे लगाने सरगमा लगा और ताना लगा कुम किरना नाल दे ताल दागड़ी दे ताल के तुसी ताना लगाते हो ताल का ना ख्याल भुल जाए। ताना भी लगाओ और ताल दे अंदर लगाओ, ताल ते स्वर का मिलाप करके कीर्तन करना, बाणी नूं राग विच ताल विच गायन करना, इस नूं कीर्तन कहिंदे। जे राग ते ताल कढ दिओ बाणी पढ़ी जाओ वो कीर्तन नहीं हैगा, पाठ हैगा। तो पाठ जिहड़ा है वो राग तो बिना बाणी पढ़नी पाठ है, राग और ताल दे विच गायन करना जिहड़ा है वो कीर्तन। तो गुरु साहब कहिंदे दागड़ी दे ताल, ताल दे विच तुसीं घुम किरना नाल पलटे लगाओ सरगमा करो और ताना लगाओ। उसका स्वरूप सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जो फरमा रहे हैं।

अमृतसर सतगुर सत भक्ति जित नाते कौआ हंस होवे अमृतसर की अमृतसर गुर अमृतसर न बढ़ाया सब दाते किल वेख पंग

श्रवण करो भाई बलबीर सिंह जी दे रागी जते पासों शब्द बिसर गई सब तात पर आई जब ते साध संगत मोहे पाई।

बिसर गई सब तात जब ते साध संगत मोह रहाओ ना को बैरी नहीं बेगाना सगले।

सब मेरा विदया प्रभु एक है, सब मेरा विदया प्रभु एक है, सब मेरा रब रहया रहया रहया सब एक है, सब मेरा विदया।

पांच सुर का राग है, सा दा मा धा नी, पांच सुर है। इसमें रे और पा ये नहीं लगना। सा दा मा धा नी सा दा नी धा मा धा मा धा चंद्र कौश निषाद बदल गया ना, माल कौश का निषाद नीवा, चंद्र कौश का निषाद उपरला। इस चंद्र कौश और सूरज कौश।

एक ताल दो ताल हूं तीन ताल श्रवण कर लो नहीं जी दो ताल हो गया हूं तीन ताल जो कब कीनो सो भल मान्यो इस मत साधु ते पाई सब मेरा वरे आ राग जोग।

0: एक ताल, दो ताल, तीन ताल, चार ताल और चार ही राग, माल कौस, चंद्र कौस, सूर्य कौस, जोग कौस, चार ही पंक्तियां, बिसर गई सब तात्पराई, जब ते सत्संग मो पाई, ना को बैरी ना ही बिगाना, सगल संग हमको बने आई, जो प्रभु की नो सो भल मान्यो, इस मत साधु दे पाई, सब मेरा रहे प्रभु एक है, देख देख नानक बिकसाई, आप जी ने श्रवण किया है, तराना, साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज फरमा रहे ने, ये तराना जेड़ा है, ये अनकौमा जेड़िया ने गैर सिखा नू झुका के रख देने वाली बात है। मैं इतने बहुत वड्डे वड्डे गंधर्व गायक कट्ठे हुए सी, कहने लगे जी सिखा नू तां राग गाउणा ही नहीं आउंदा, ऐसा सारे सामने ना किया, कहिंदे असल वार तां ला लैंदे आ पर राग गाउणा नहीं आउंदा। मैं कहा जी राग साडे सतगुरां ने गाए आ, कहिंदे गाए ते तुसीं सुनाओ, ये तराना सुनाया और सारे हाथ जोड़ के कहिंदे जी ये सानूं लिखा दिओ तराना, असीं तां इस तरह की बंदिश कदी सुनी ही नहीं। मैं कहा जी ये फिर साहब गुरु गोबिंद सिंह की बात है, उन्होंने मत्था टेको तो उन्होंने को ही श्रवण करो, उन्होंने को ही दास प्राप्त करो। सारे ने फिर बड़े अदब नाल साहब गुरु गोबिंद सिंह के चरणों नमस्कार की, इतने दुर्गाना मंदिर की बात है, सारे आखो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब मान, तो तराना श्रवण करना साहब सच्चे पातशाह आप गाते रहे और आप इन्होंने इस तरह के 20 तराने श्री सरवलो प्रकाश ग्रंथ अंदर विद्यमान ने, कभी आप दर्शन करना तो
1: कदरे दानी दानी दोम रानी तल तुम चिरना, कदरे दानी दानी दोम रानी तल तुम चिरना, तल तुम चिरना तल तुम चिरना।
0: जिस वेले आवे ना तुम दानी उदो महाराज नु मत्था टेकना जे, तुम दानी हम भिखारी हैं और तुम दानी है,
1: तालल तुम डरना, तत्र दानी दानी तुम दानी तालल तुम डरना, तत्र दानी दानी तुम दानी तालल तुम डरना,
0: तत्र दानी दानी तुम दानी तालल तुम डरना, तालल तुम डरना, तत्र दानी।

तेरे दर्दा भिखारी हां मंगता हां। आरता मैंने मंगता, जिथे आरता का अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने गोपाल गो मैंने पितमी पाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्ति।

महबूबे बीबा तक गाय के सन्माने डिमांड निकाणे रकान संकत श्री गुरु ग्रंथ साहब हजूरी डायरेक्टर बड़ी अकीत दिलाबली बेटी गुरु प्रसाद सिंह जी आप जी सरकार के काबिल हो जो आप जी जिंदगी के इतने अहम करे मसलों आप जी ने समा कटिया जो आप जी ने सोच लिया कि आप उत्तर बाद में जाना है एक गल नाल ही घट आज हो गई सब कुछ टूट पै गया आगे हो गई इतने पाठक जी ने आप जी बड़े सुंदर अंदाज संगीत गलत की सत्योग विद्वान लोग बैठे कंकन जी रणजीत सिंह साहब जी दशहर साहब जी कान जी मेरे जी अजिंदर शीतल सिंह जी बैठे हैं सत्संग जी जो संगीत है गाने का एक गलत नहीं मजबूत बिल्कुल गलत नहीं ये कन्ना की गल पै गई नहीं कदम इन्हें राजी हो गए इन्हें राजी नहीं सिर्फ बढ़ने ये गल का मजबूत न बनता गल है आज गल है मेहनत जिन की सुपारत है जिड़ा मर्जी करता है एक कर्म का कर्म है गल का कोई मजबूत नहीं जिन्हें करना है उन साधन की होगी नहीं मिलनी पहली गल साढ़े तेरे अखर लग गया है ये तो आड़ है सचिन जी पैसा भी कहा तो खाली बता रहा बिल्कुल नहीं मिलता सी इस तंत्र शिव गल तो ठीक है मैं दो गल कह के सात संगी दुनिया के दो फाइन आर्ट हैं तीजा दुनिया के काम कोई दो कड़े काम गवा पेंटिंग पेंटिंग का वजूद बन गया गाने का कोई स्वरूप नहीं ना शब्द का स्वरूप है ना आदि स्वरूप है ना परमेश्वर यह अनिच बात है जब जो सू समझ आ गई कीर्तन की है तो फिर सत्संग की आवाज की लड़ नहीं झगड़े की लड़ नहीं झगड़े खत्म हो जाएंगे राश 25 मिनट टाइम है राश तकरीबन 20-22 मिनट अंग्रेजी समाप्ति करेंगे शब्द की ठीक है आपे गुर चेला है आपे आपे हर प्रभ चोट बनाणी राग तकलीफ है शर्म करेंगे दावे नहीं कह सकते तो एक बहुत महान बात है बिल्कुल प्रतिभा है आओ आपकी मदद मैं पूछ सकते वाहे।

जी ये आप सुनने वाले लोग हैं, कीर्तन करने वाले हैं। कीर्तन एक ऐसी चीज है, प्रभु की कीर्ति करनी, और राग ताल गुरबानी और प्यार, उसके बाद जिंदगी में सिखलाई होनी, ये सब चीजें बड़ी जरूरी हैं। और सबसे ऊपर है इंसान का जो प्यार है, प्रेम है। तो कबीर साहब कह रहे हैं, मैंने अपने सारे शरीर पे प्रभु

कलापे ही करना क्यों कलापे ही ते तारिये देखे कीता अपना तर्क ची पक्की सारिये जो आया सो चल सी सबको आई वारिये जिसके ती प्राण है तो साहे मनो सारिये अपन हथी अपना आपे ही काय सो

मार्ग देखते दे तुरना, गरीब ने भी तुरना है, अमीर ने भी तुरना है, कंगाल ने भी तुरना है, राजे महाराजे ने भी तुरना। कौन अपना महाराज इतने लंके जी रह गए, कारा भी ये थे, मकान भी ये थे, जमीना भी ये थे, पुत्र धिया ने भी साथ नहीं देना, कड़ी वस्तु मेरे नाल जाएगी तो हलूर।

0: एक नाम है
1: तो भाई के दराई की माता जी बच्चों कर दे सन टिकट कितना संभाल के यूके जाना हो हजारा रुपए की टिकट होती है भी संभाल ए टिकट जो सिर दे के वाहगुरु जो शब्द गुरमंत्र सानू गुरु तो गुरमंत्र जो नाम है ना तो सानू गुरु और कोई नाम नहीं दे सकता नाम पूरे गुरु तू मिले ते नाम दी जो प्रेरणा है ये नाम जपन वाले महापुरुष नाम गुरु तू नाम अमोलक रतन है पूरे सदगुरु पूरे गुरु तू किस वेले मिले जिस वेले असी अमृत छक पंजा प्यारे साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी जिस वेले पंज अपन भुलों को सोध अरदास कर अमृत तैयार करते हैं तो कलगीधर पिता जी का हुक्म है कि साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी भी जिस वेले पंज प्यारे त्यार पर त्यार अपने सोध के अपने आप को सोध के साहबा की हजूरी खड़ोते होते हैं अगर कहना उन्हें पंजा के अंदर मैं आप आ गया पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावन पंचे सो है इतने कोई व्यक्ति नहीं ओ व्यक्ति पंजा ही शामिल कलगीधर पातशाह जी ने इन बंधना कट दो कोई व्यक्ति पर जो गुरसिख बाणी का निकले भी प्रेम गुरु के हुक्म रहना फिर अमृत पान कराने को पहला फिर भी अरदास करना कलयुगी जी हर वेले हर श्वास बोले ना आप बख्शिश करो पिछले अवगुण बख्श ल प्रभ आगे गुरु बख्शते बहुत पंच प्यारे त्यार कर फिर अमृत छकन वाले उस वेले गुरमंत्र दीना गुरु गुरु तो मिलेगा इस नाम की प्रोता महापुरुष बाबा जी बचन करते सन गुरुआ गुरु गुरु ग्रंथ पर संगत महापुरुष केड़े महापुरुष है जेड़े सन गुरु ग्रंथ साहब जेड़े तोड़ते उन्होंने की संगत महापुरुष बचन करते सन जो गुरु ग्रंथ साहब तो प्या तोड़ता है वह सानू गुरु तू तोड़ी संगत नहीं जेडी जुड़न वाले हैं जिन्हों की संगड़िया दुरमत मजे मित्र सारे सही हाँ नुढ़ेंदी जग सभाया जन नानक विरले कहते है ही कोई नहीं भाई है विरले ना ही घने फैल पकड़ नाम फोटो वेखो ना भी किसी चीज का और नाम की प्रेम जिस तरह मास्टर इनम नहीं ना बन सकता मास्टर हो इन हो इसे तरह संत सारे चंगे हैं पर जो धन गुरु नानक पातशाह जी का संत है वो सिख है बापू है वो आप गुरु नहीं बनेगा संत बुरा जोड़ देगा
2: You are listening to SeekNet Media, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

राग बिलावल महला पंजवां दूप दे घर अठवां। मैं ना ही प्रभ सब किछ तेरा, आई एम नथिंग ओ गॉड एवरीथिंग इज योर्स। ईग है निर्गुण उग है सरगुण, केल करत विच स्वामी मेरा। In this world, you are the absolute, formless Lord. In the world hereafter, you are the related Lord of form. You play it both ways. Nagar mein aap, bahar pun aapan, prab mere ko sagal basera. You exist within the city and beyond it as well. Oh my God, you are everywhere. Aape hi rajan, आपे ही राया, कह कह ठाकुर कह कह चेरा। यू योर सेल्फ आर द किंग एंड यू योर सेल्फ आर द सब्जेक्ट। इन वन प्लेस यू आर द लॉर्ड एंड मास्टर एंड इन अनदर प्लेस यू आर द डिसाइपल। काको दुराओ कास्यो बलबंचा, जह जह पेखो तह तह नेरा। फ्रॉम होम शुड आई हाइड, whom should I try to deceive? Wherever I look, I see you near at hand. Saad murat gur petyo nanak, mil sagar bund nahi anheera. O Nanak, I have met with Guru, the embodiment of holy saints. Like the drop of water merges into the ocean, it cannot be distinguished as separate again. Main nahi prab sab kuch tera. The Shabad is composed in Rag Emily Bilawal. It's a combination of Rag Yaman and Rag Bilawal. And the Taal is Panjital Di Swari, 15 beats.

तू बेअंत को बिरला जाने को बिरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे निया तू बेन ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सभी मुन इंद्र महाशिव जो करी तू बेन अत ऊंचा ताका दरबारा